पठानी गर्ल्स भी थी हमेरा गुवाहाटी वाले थे वो जिस बाजू गुल कैसे मैसेज करे थे अकबरपुर ना अकबरपुर किसी कम से मंगा प्रोडक्ट मरवा बिक्री वाले सर मिला अकबरपुर के मुख्तलिफ किस्म को मंगा प्रोडक्ट मिला खेरा पुंडी चाव दीदी खेरा तो पुंडी चाव तो पारा समा क्रिक क्रीम वाले खेरा इनशाला दुआ गाने वगैरह खेरा सलाम भाई सिंह वाले सलाम मनीष तो सलाम जी गुलाल बीमार है द्वारा तक कभी जी गुलाली चार सदी वाले समय प्रोग्राम और सलाम जी मेहरबानी जमा ची सरो खदल गना ब्याह बे रावड़ी खा जबरदर समय इनशाला खुमाला बे रावड़ी डॉक्टर है इनशाला देखे रखा ओके जी डेरा मेहरबानी शुक्रिया जी बदी नंबर कालो कमा का सुबल नंबर अगर तरसन कई आफिया मा सर बल नंबर कम दे जमा सर मोबाइल स्टरे ना मड़ा मंगदूर गरीबाना नहीं चमक सर मोबाइल कम दे दाई मोबाइल दे दम स्टूडियो मोबाइल लेकर के मंगे इस्तेमाल सलाम भाई वालेकुम सलाम आयशा इमा चार सदी ने कामयाब शुरू रहा देर मन ना शुक्रिया जी चहर जते हादा पर सुचाला बरेली सुकाले जंदी सही पल कोरबा खाते जान दो गानो क्या सताई दो लुएला फमा

नए गुरम दरवाजे सामी सुनने दी ओके जी दगा सिंदर वहां में एंजॉय कवर सरवर सरबा ससु मीना ससु एहतरामा ससु बलाडीर जत मीना जी गंदे अगर हम जदन सर प्रोग्राम के शामिल हूं खुदा से दे मैसेज न वाला ससु गोरे रुके गई मां सब ते निश्ता कना मां गोरे यो प्रोग्राम से कजा कड़ो छ दासु गोरे ओए अगर माशुमान पशान हद लो बनो बा सलाम सईदा अक्सर माशुमान चिकल राजम मशी के नाम अक्सर मालत के दासी हुजरे के या चम के अगर माशुमान अमजूल राजम मशी बिलोरी के या लो भी कही के ना अगर सर के चवला पट्टी की और मंडे तल छे गमने चार चा फेरे थी वही कम माशुम लेट रहा जो ना वही तो गमने नो वही तो छुटा ही वही तो लेट रहा गले और के वही चिदाया हुआ रहू कुके ना अनु वही बला फेरा वारा के बबिया था लो बिकिजान सर जिगम दे एट को

0: back right after the commercial break.
1: जिंदगी एक खूबसूरत सफर है। जब इंसान तंदुरुस्त हो तो हर दिन नया लगता है, हर सांस ताजगी भरी महसूस होती है। लेकिन जब बीमारी जिस्म पर दस्तक दे तो मुस्कुराहटों के रंग भी मधम हो जाते हैं। ऐसे वक्त में जरूरत होती है एक ऐसे मरकज़े शिफा की, जहां दवा के साथ साथ दुआ का यकीन भी शामिल हो। और अब वही यकीन, वही उम्मीद आपके अपने शहर सवाबी में, जहांगीरा रोड शाह मंसूर बाबा मदरसा के करीब शाह मंसूर में मौजूद है। हैदर मोमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी। ये सिर्फ एक अस्पताल नहीं बल्कि इत्मीनान, भरोसे और शिफा की वो जगह है, जहां मरीज को फाइल नहीं एक इंसान समझा जाता है, जहां इलाज सिर्फ बीमारी का नहीं बल्कि इंसान के एहसासात का भी होता है। ज़ेरे निगरानी डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद, जो अपने तजर्बे, इल्म और खुलूस से हर मरीज के लिए शिफा का जरिया बने हुए हैं। उनके साथ मौजूद हैं हाई काबिल और महारत याफ्ता डॉक्टर्स की टीम, जो हर मरीज के इलाज को एक फर्ज, एक खिदमत और एक मिशन समझती है। चाहे मसला शुगर का हो या ब्लड प्रेशर का, मैदे के मसाइल हो या जोड़ों का दर्द, दमा, एलर्जी या सांस की दुश्वारी हो, खवातीन के अमराज या आसाबी थकन, हर बीमारी का कुदरती, महफूज और देरपा इलाज सिर्फ हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी में। यहाँ ना खतरनाक दवाएं, ना साइड इफेक्ट, बस खालिस होम्योपैथिक इलाज जो जिस्म के साथ दिल को भी सुकून देता है, क्योंकि यहाँ यकीन है कि शिफा दवा से नहीं दुआ से भी मिलती है। अपना अपॉइंटमेंट हासिल करने के लिए या बराहे रास्त डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद से राब्ता करने के लिए अभी कॉल करें 0331-939-4941। आपकी सेहत हमारा अज़्म, आपका एतमाद हमारी पहचान। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी। कुदरती शिफा, दिल से दुआ। कुदरती शिफा।

0: दिल से दुआ
1: हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर
2: सबाबी जवानी द जवानको न बगैर निमगिड़ी हुई हु कुचरता दग जवानको पवख बानी गम उनकलेशी न प रारवान वक की दग जवान की स्तासु द खाइस द खराबे दो बाइस जुड़ देशी द ऑयल स्किन और द दानो द पारा यो डीर खास मेडिकेटेड फार्मूला डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी फेस वॉश डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी क्रीम तुम चिप सलूर सौ रुपए बाने द सलूर बेहतरीन इंग्रेडिएंट सर तैयार शुए डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी क्रीम डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी फेस वॉश तुम चिप द ऑयली स्किन और द एक्नीज द पारा देर बेहतरीन फार्मूला दा कुम चिप सलूर उरजु की सासु द स्किन एक्नीज पिंपल पो मुकम्मल तो गबाने खत्म ही और ये वाज़ दाना द दग दानो चकम दागो न दी अगर हम पो मुकम्मल तो गबाने खत्म ही की पर देखे बेहतरीन एक्टिव इंग्रेडिएंट शामिल दी लका बेंजोइल परऑक्साइड सल्सिलिक एसिड ट्री ट्री ऑयल और क्लिंडामाइसिन कुम ची यो देर बेहतरीन एंटी बैक्टीरियल एंटी इन्फ्लेमेटरी इंग्रेडिएंट्स दी और दग प्रोडक्ट्स डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड हम दी कुम ची सिर्फ और सिर्फ पसलूर उस्पो की दनन दनन स्तासु दानी और द दानो दागुना पर मुकम्मल तो गबानी खत्म ही नो जर तरजरा द निजदी कॉस्मेटिक्स जनरल और मेडिकल स्टोर ना द बेलाडोना कॉस्मेटिक्स डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी फेस वॉश डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी क्रीम वाखली और द स्किन देर मसले अवारे कई द मजीद मालूमात द पारा जमुंग दगा वेबसाइट विजिट कई www.belladona.com.pk

आप सुन रहे हैं दिलबर एफएम 94 स्वाबी से इस्लामिक ट्रांसमिशन। आप सुन रहे हैं दिलबर एफएम 94 स्वाबी से इस्लामिक ट्रांसमिशन। रूहानी सुकून, ईमान की रोशनी और दिल को छू लेने वाले लम्हे। कुरान, सुन्नत, अखलाकी सबक और रूहानी गुफ्तगू, ये सब सिर्फ एक जगह, दिलबर एफएम 94 स्वाबी।

0: रेडियो दिलबर, अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर, लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk।
1: Music and information station 94

Well, ladies and gentlemen, girls and guys, Tahir Zaman, आप लोगों संग आप लोगों के साथ साथ frequency modulation FM 94 radio दिलवर सौभी से जी. अच्छा एक अदद मौजू भी होगा, मौजू के हवाले से भी हम गुफ्तगू करेंगे. सो मेरे नए सुनने वाले कैसे हैं, पुराने सुनने वाले कैसे हैं. नए सुनने वाले अगर आप पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आप लोगों को वेलकम कहते हैं जी. आज का टॉपिक बहुत ही जबरदस्त है जी. जो लोग दिल को सुकून देते हैं वो जिंदगी में इतने खास क्यों बन जाते हैं, कभी आप लोगों ने सोचा है या कभी आप लोगों की सोच से ये बात गुजरी है. मेरे मोहतरम सामीन, दुनिया में खूबसूरत चेहरे बहुत ज्यादा मिल जाते हैं, अच्छी बातें करने वाले लोग भी बहुत मिल जाते हैं, लेकिन वो लोग हाय जो लोग दिल को सुकून दे दें वो कम मिलते हैं जी. क्योंकि दिल को सुकून हुस्न से नहीं मिलता बल्कि दौलत से भी नहीं मिलता बल्कि खलूस से मिलता है, एहतराम से मिलता है, अपनाइयत से मिलता है, और इसी के साथ साथ सच्चे एहसास के साथ मतलब जो है ना ये है कि दिल को एक सुकून मिल जाता है. बाद लोग हमारी जिंदगी में ऐसे आते हैं कि उनसे बात हो जाए तो पूरा दिन अच्छा गुजर जाता है, अच्छा मतलब जो है ना टाइम निकल जाता है. उनकी आवाज सुन ले तो दिल की बेचैनी कम हो जाती है, उनकी एक मुस्कुराहट सैकड़ों परेशानियां हमारी खत्म कर देती है, या सैकड़ों मतलब परेशानियों पर बारी पड़ जाती है ना. यही वो लोग होते हैं जो आहिस्ता आहिस्ता हमारे दिल में जगह बना देते हैं. जगह क्या मतलब ये है कि एक घर बना लेते हैं ना, और फिर इंसान उन्हें बुला नहीं पाता. मेरे दोस्तों, मोहब्बत सिर्फ जो है ना ये नहीं है कि कोई हर वक्त जो है ना मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ ये कहता रहे. ये मेरी बात याद रखिएगा कि सच्ची मोहब्बत वो होती है जिसकी मौजूदगी में दिल को सुकून मिले, जिसके सामने इंसान खुद को बदलने की मतलब इंसान को जरूरत ही ना महसूस हो, जिसके साथ खामोशी भी जो है ना खूबसूरत लगे, जिसकी एक दुआ हजारों लफ्जों से ज्यादा असर रखती हो. बाज़ रिश्तों में बातें बहुत कम होती हैं लेकिन एहसास बहुत ज्यादा होते हैं. ऐसे ताल्लुकात वक्त के साथ कमजोर नहीं होते बल्कि और मजबूत होते चले जाते हैं. सो यहाँ एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि कभी कभी कोई इंसान हमारी जिंदगी में सिर्फ चंद दिनों के लिए आता है मगर वो इतना गहरा असर छोड़ जाता है कि जो ताहिर ज़मान अपने लफ्जों में बयान नहीं कर सकता. वेल जी, आप लोगों की टेलीफोन कॉल्स को भी साथ साथ एंटरटेन किया जाएगा, शामिल किया जाएगा, मतलब आप लोगों की लाइव कॉल्स भी प्रोग्राम में शामिल की जाएंगी. साथ साथ ये है कि आप लोगों के मैसेजेस को भी एंटरटेन किया जाएगा. अगर कोई भी हमें मैसेज करना चाहता है, मैसेज के जरिए हमारे इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहता है, हमारी इस महफिल में आना चाहता है, तो जरूर आइएगा, जरूर हमारी इस महफिल का हिस्सा बनिएगा. 03072700666 मतलब 0307-27-00666 इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं. इस नंबर पे कांटेक्ट करके साथ निभा सकते हैं, साथ दे सकते हैं, अपनी मौजूदगी का एहसास दिलवा सकते हैं. अच्छा एक पश्तो का ट्रैक प्रोग्राम में शामिल करते हैं जी. ट्रैक को हम यहीं पे पोस्ट करते हैं एंड पश्तो का ट्रैक, यस ये वाला ट्रैक, आई होप कि आप इसे एंजॉय करेंगे, आप लोगों को अच्छा लगेगा. जरूर आइएगा, जरूर साथ दीजिएगा. 03072700666

ये रानन तबीयत गमदन ब्यास गड़बड़ दे और दस लगी ची की खैर खरीद ते आयशे एम द पंचीर ना आवाज ओके दे और फुगियां मोहम ना इस से जी शुक्रिया डेर मनन ना ज्वंदे ग्रंदे से जी और ज्वंदे उसा आयशा और प्रोग्राम मुहम नाइस जी आयजा खान सिंह दा आयजा खान खदा।

आज यार मुझे बहुत ज्यादा छींकें लगी हुई हैं और बार बार मुझे माइक बंद करना पड़ रहा है, और अगर प्रोग्राम ना करता तो प्रोग्राम की मतलब ये है कि क्या बात कर रहा था, हाँ बात भूल गई भाई। ये भी बहुत बड़ा मसला होता है ना जी, कि बात का भूल जाना, बातों का भूल जाना। ये वैसे आप क्या समझते हैं कि ये किस चीज की निशानी है कि बात बंदा मतलब क्यों भूल जाता है? मेरे मोहतरम सामीन, बाज़ औक़ात इंसान की सांसें तो चल रही होती हैं, वो लोगों के दरमियान भी होता है, मुस्कुराता भी, अपनी जिम्मेदारियां भी निभा रहा होता है, मगर हकीकत ये होती है कि वो अंदर से टूट चुका होता है। बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो इंसान को जिस्मानी तौर पर नहीं बल्कि रूहानी और जज्बाती तौर पर मतलब कमजोर कर देते हैं, बेहद कमजोर कर देते हैं, इंसान बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है। और इसी कैफियत को लोग अक्सर यूं बयान करते हैं कि इंसान वक्त से पहले जो है ना क्यों मर जाता है, या मतलब इंसान वक्त से पहले ही मर जाता है। ये एक अदबी और जज्बाती अंदाज बयान है, यानी इंसान की खुशियां, उम्मीदें या हौसला जैसे खत्म हो गया हो। कभी कभी किसी के बदल जाने का दुख, कभी किसी मतलब अपने की जुदाई, कभी टूटे हुए ख्वाब और कभी मुसलसल आजमाइशें इंसान के दिल पर ऐसे जख्म छोड़ जाती हैं कि वो पहले जैसा नहीं रहता। हंसता जरूर है मगर पहले जैसी बेफिक्री नहीं रहती ना, वो बातें जरूर करते हैं मगर उसके लहजे में एक खामोशी होती है, एक खामोश उदासी मतलब जो है ना शामिल होती है, और एक इस तरह की उदासी शामिल होती है जो कि लफ्जों में बयान नहीं हो सकती थी। और बाज़ औक़ात आंखें भी बदल जाती हैं, जैसे कि इन टप्पों में मतलब ये बात हो, तस तर के बदल इकड़े, मतलब तुमने आंखें बदल दी तो मैं क्या बात कर रहा था भाई। बाज़ औक़ात आंखें भी बदल जाती हैं, पहले जिन आंखों में ख्वाब चमकते थे अब उनमें खामोशी और गहराई उतर आती है। मेरे दोस्तों, जिंदगी में ऐसे लम्हे जरूर आते हैं जब इंसान को लगता है कि शायद अब कुछ बाकी नहीं है, अब कुछ नहीं रहा, लेकिन यही वो वक्त होता है जब इंसान को अपने रब की रहमत से उम्मीद बांधनी चाहिए, अपने अल्लाह से उम्मीद रखनी चाहिए। क्या आप इन टपों को एंजॉय करें जी, इन टपों के बाद वापस आते हैं, मजीद की बातें करेंगे, मजीद की गुफ्तगू आप लोगों के साथ जारी सारी रखेंगे। सो साथ जरूर दीजिएगा, साथ जरूर निभाइएगा। 0307 27 00 666, अगेन से मैं नंबर बताना चाहूंगा आप दोस्तों को, 0307 27 00 666।

呼唤的。जिंदगी में सबसे वफादार तो बिजली है, जब एक को पकड़े तो फिर दसिंग मैसेज कर दिया खुदा पाक, वही वही वही वही वही वही वही वही वही दफ़ा मिश कम दर मेगी भी किश्वा वही वही वही वही वही

तुझको बारिश पसंद है और मुझको बारिश में तुम। अरीबा तुझको बारिश पसंद है और बारिश में मुझको तुम। जरा कोशिश करो जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जो मरियम है, मनना शुक्रिया मरियम ये। ट्रैक बदलो जी, ट्रैक बदलो और ट्रैक तस्वारा सदासी रोमांटिक ट्रैक प्रोग्राम के शामिल हो यार। यस द बारान मौसम हम दे और द आसमान हम जिकमने न प्लक बुक गई हो ट्रैक शामिल हो उस्ता द इश्क बारानु ना और उस्ता द इश्क बारानु ना। वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा आज बड़ी मजे की बात आप लोगों को बताऊं, यहाँ पे आज हमारे ये प्रोग्राम FM 94 रेडियो दिलबर स्वाबी की फ्रिक्वेंसी से मेरे हरिपुर के सुनने वाले भी काफी सुन रहे हैं, जो कि मुझे हरिपुर के स्टेशन से स्माइल FM से सुनते होते हैं। सो उन लोगों को भी मैं वेलकम कहता हूँ जी, जो कि हजारा में मेरी आवाज सुन रहे हैं, लाइक स्पेशली हरिपुर में, एबटाबाद में, मानसेरा में, बालाकोट में, साथ साथ आजाद कश्मीर में, या फिर लाइक अगर आप हसन अब्दाल वगैरह साइड पे सुन रहे हैं, या साथ साथ वाक एंड टेक्सला इन साइडों पे सुन रहे हैं, तो आप सभी को वेलकम कहते हैं जी। अच्छा मानसेरा से हमारा साथ दे रही हैं ये बाबा की डोल, हमारा साथ दे रही हैं। शो बहुत ही अच्छा है, बहुत बहुत शुक्रिया बाबा की डोल। बाबा की डोल को जो है ना ये कि पश्तो समझ आती है ये नहीं आती, और बाबा की डोल कह रही है कि मैं बड़े लंबे अरसे के बाद आपका ये प्रोग्राम सुन रही हूँ और आपकी आवाज सुन रही हूँ। आपका ये प्रोग्राम मैं सुना करती थी कहाँ से जी? अच्छा सही, एबटाबाद स्टेशन से आप सुनती थी मेरा प्रोग्राम। ताहिर भैया अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एंड आई ताहिर मुंतासरा डी रजियात अमीना खो नोले जमा पमीन जगमन तासो शक दे कसिंगा जोले जगमन तासो मीना को जोहम जगमन तासो डी रजियात अमीना को गाना। शामिर खान जो जलबिया मुंतमैसेज कीजिए कला बटना मनाना शुक्रिया।

जा चुका हूँ और मैं पठान घराने में पैदा हुआ हूँ। मेरा मतलब जितना भी ननियाल है या मेरा मतलब जो ददयाल था वो भी पठान था और मेरा ननियाल वगैरह भी जो है ना पठान है। मेरे मतलब मामू लोग भी पठान है, ठीक है ना। और मेरी पैदाइश मरगुज में हुई है और ये है कि मैं यहाँ पे फुल फ्लैश जो है ना बचपन से पश्तो ठीक तरीके से प्रॉपरली परफेक्टली जो है ना मैं बोलता रहा हूँ और बाद में जाके वो एक लैंग्वेज स्पेस बीच में आ जाते हैं ना। अब मेरा जितना मतलब कुछ थोड़ा सा बचपन यहाँ भी गुजरा है ये सवाबी में मरगुज में और उसके बाद मैं हरिपुर शिफ्ट हो गया। मतलब हमारी फैमिली जो है ना हरिपुर में चली गई, हरिपुर शिफ्ट हो गए। अब ये काकी में मुझे मैं मतलब जो है ना आप लोगों ने मेरी जुबान से देखा होगा सुना होगा, मतलब देख तो खैर नहीं सकते सुना होगा आप लोगों ने कि इन चीजों का मैं बहुत ज्यादा ख्याल रखता हूँ कि काकी अल्फाज की जो अदायगी होती है ना ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। जब आप अल्फाज की अदायगी ठीक तरीके से करते हैं ना काकी में फर्क करते हैं। हम पठानों का मसला ही क्या है, हम पठानों का मसला यही है कि हम काकी में फर्क नहीं करते हैं। पी को हम एफ पर पढ़ रहे होते हैं, एफ को हम पी पढ़ रहे होते हैं, मतलब जो है ना एक अजीब सा अपनी मतलब अपनी तरफ से एक उर्दू बनाई होती है हमने ना।

मदर नच कम दन तपोसो को तासो नेम उनवे आओ एसएमएस ते सुमरज कम देनो बदल को दावले जो पुए ने चिदा मैसेज माँ वाली कम दन बदल कीजिए समन मैसेज के समन मनना शुक्रिया समन समन रात अखकारी ची खुशहाली दर कुछ कम देनो रोन रोन अदा अल्लाह दल लज कम देनो डीर डीर और डीर खुशहाली अंज कम देन नसीब का अल्लाह मो चेरी माहुम अल्लाह मो चेरी मा खफा कवा साद साज कम देन मुंसर प्रोग्राम के शामिल शुजी मनाना शुक्रिया साद हुरिया अगेन हमारे साथ दे रही है तोताली से बहुत बहुत शुक्रिया हुरिया तोताली से हमारे साथ देने के लिए यार अभी मैं अपना ये टेम्पो जो है ना चेंज करता हूँ और उर्दू में प्रोग्राम को प्रेजेंट करते हैं क्या ख्याल है और ट्रैक में देखता हूँ कि कोई इस तरह की मिल जाए तो उसे हम साथ साथ बैकग्राउंड पे थोड़ा थोड़ा चलाते रहेंगे और साथ साथ ये कि अपनी कन्वर्सेशन अपनी बातें बातों का सिलसिला जारी सारे रखेंगे हैं? ये ट्रैक भी इतनी जल्दी खत्म हो गया थोड़ा सा बैक कर लेते हैं और मैं ट्रैक आप लोगों के लिए उर्दू का सर्च कर लूं।

सुटती स दो सौ अस्सी चार सौ पचानवे गुरु जी मुंगसर पर लाइव काल सुख राजियो चर्चना।